0: SBB Bandar Dangdut Jakarta.
1: As you say, sunshine.
2: Sunshine? कहाँ से ढूंढकर लाते हो तुम ये सब प्राचीन वर्ड्स?
1: जहाँ से मैं आया हूँ।
2: ओ, तो आप यहाँ क्या लेने आए हैं?
1: प्यार।
2: Just a tip. हमारी दुनिया में प्यार व्यार नहीं होता, तो शायद आपको खाली हाथ जाना पड़े, क्यों ना?